0: 实力的竞技场。第一关笔试，第二关数科。缝纫师国考，这是慈济缝纫班学员的一大步。初级证照是门槛，中级证照是进阶。成果揭晓，共有16位学员考取国家证照，14人初级，2人中级。
1: 在尼泊尔来讲的话呢，如果依据这个国家考证委员会给我们的信息，是从来没有一个团体会去支持那么多的女孩。
0: 7月，他们正式拿到了人生中另一个重要的身份证明。
1: 这一份证件是非常富有意义的哈，因为从一开始，女孩子们从不会拿剪刀、不会计算，第一次从村庄走出来，那从来都没有人相信过她的可能。是上人就是殷殷的叮咛说，要把他们提升，从地上扶起来，还要给她人生的方向。那今天拿到这个裁缝师的证照，就是其中一个人生的方向。
0: 安妮塔就是那个从村庄走出的女孩。一张初级证照，她抬头挺胸。
2: खोल सकिला और चला सकिला वहाँ से भी पैसा कमा भी सकिला अपन घरवालन के भी देख सकिला अपन भी खर्चा पानी चला सकिला मेरे जात में चाहिए कुने पनी मांचे लेते थे बाहर नहीं इसके बाहर नहीं जाने कहके लेकिन हम अनपचन के थ्रू अपन उदाहरण देके भी अनपचन के बुलाई के सिखा भी सकिला एठू सबके बारे निकले चानस भी दे सकिला सिख भी सिखा सकिला अपने जैसन काम भी करे के जाना सकिला।
0: 在缝纫班当老师的毕丹心则取得了中级证照，他因为患有肾脏病，在这里任教后减少经济压力。
3: अब सर्टिफिकेट मिले पछि यही काम करने हो मतलब सर्टिफिकेट मिले के बाद हमें यही काम करे चाहत रहे हैं और हमें यही इच्छा है मतलब जिससे तकलीफ हो एक बाद हम बाहर ना ही काम कर सकी थे और ये मतलब लेवल टू हम क्रॉस करें मतलब सेकंड बेच क्लास करे हैं मतलब सीखो करें और सीखो खनती मतलब यही जो करे हमें तो मतलब यही सिखाए पाए कर
0: 从学会缝纫到取得国家证照，不分男女，凭借双手改善家计，翻转人生，转变志工们最懂。
4: 从这个眼睛都不敢直视，很就是害羞，没有自信，到现在有自信。那重点自信并没有自傲，那对家庭呢又产生了很大的帮忙。这个就是妇女赋能。在尼泊尔，我们跨出很稳重、很稳定的一步。
0: 大爱新闻白如露、拉美史、阿马凯什、尼泊尔报道。
5: 接下来历史今天的单元，慈济一家子守旧行新。今天要带领大家聚焦在1987年，来看到在1987年这一年，花莲慈济医院的7月22号聘任陈英和医师为骨科主任。